0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।

न जान महादेव को कहते सदाशिव निरंकार का चीन देव आप अपने कुछ रहते थे परिणत भिन्न भिन्न कोई की गुमराह न जाए सारा सदा।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकट मैंगो लीव्स केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।

0: ज्योतिषां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्च सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्।
1: श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीदेवी नमस्ते श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राहिम शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालनं हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहिमं शरणागतं चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राजगौरवं त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्वत्सल

ब्रह्मनारद संवादे शनि वज्र पंड कवचौ संपूर्णं संकाशं काश्यपेयं महाकृतिं तमो पापग्नं कर्तोऽस्मि दिवाकरम् ॐ दधीशं च तुषारावं चिरोदारणवसंभवम्।

ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम

स्मरणं परिज्वलत्कुण्डलमाञ्जनीयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहरपते प्रलयकालानन्दप्रभाज्वलत्कृतापमद्रदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षरासतो ग्रहबन्धनाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह शाकिनीग्रह दाकिनीग्रह काकिनीग्रह कामिनीग्रह ब्रह्मग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम्।

बंधय बंधय सर्व मुखं बंधय बंधय लंका प्रसाद भंजन सर्व जनन्नी वशमानय वशमानय श्री क्लीं क्लीं श्रीं सर्वाराकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्मय मर्मय मारय मारय चूर्णय चूर्णय घे घे घे श्री रामचंद्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मि कुरु कुरु ह्रों फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन् बाला।

कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानपि तदे धर्मेण रक्तं मह्यं च कृपया पुष्करे पुरा त्रिपुरारिश्चय कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा अमोच ब्रह्माय कृत्वा मधुकैटभयोर्भया सद्यहार रुत्तबीजं यत्कृत्वा पत्रकानिका यत्कृत्वा हिमेन्द्रस्य शन्तापकमनार्थ

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन हो है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीकेंड है।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चार इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब पहले तो पितृ पक्ष शुरू होने होगा। अब गणेश उत्सव जो है उससे सारे महाउत्सव जो है हर साल, तो गणेश उत्सव हमने मना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो अब आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातचीत आपके साथ करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में इस फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर नया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसी आउटडोर फर्नीचर आपको चाहिए, तो वो सारा सामान ही आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, तो सारा सामान आपको, ये जो सारा सामान है ये आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, और फिर ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने मूविंग करनी है तो मूविंग करने के लिए आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपके लिए बहुत ही, उनकी सर्विस बढ़िया है, कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए, 416-524-6524-6704। तो जो लंदन और आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी वाली खबर है कि लंदन में अब आपके लिए खुल चुके हैं, जी हाँ, आपके लिए खुल चुके हैं मास्टर कोलिजन डिपो। तो आपका किसी तरह का भी कोलिजन का काम आपने करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो पे आप जाइएगा, गोर रोड पे मौजूद है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, आपकी कार में ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो जी है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको जैसे मैंने कहा कि कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $475 पर पाउंड तो शुरू ने, बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स ऑन 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135-016-213-1165।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है टोरंटो आसपास के इलाके में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हो। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू, तो थैंक्सगिविंग आने वाला है अभी, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग।

0: गया ऊपर चांदनी आई संभल संभल दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल
1: तीन लहरों

सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आप के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे, तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है और टीवी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, किचन की गैजेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपको मूव करना है तो एचके मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपको मदद करते हैं कनाडा भर में मूव करने में। तो एचके मूवर्स का नंबर आप लिख लीजिए 416-524-8416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। ते हैमिल्टन वासियो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तां अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਦੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-4840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स, बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत और सुनाते हैं। तो अगर आप को किसी किस्म की भी आपने गाड़ी की आपने कोलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए हैमिल्टन में, आपके लिए लंदन में, मैं कह रही हूँ हैमिल्टन में, लंदन में आपके लिए अब मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुके हैं। तो वहां पे आपकी कार एंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे। गोर रोड पे मौजूद है लंदन में। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको अपने कलीजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलीजन जीपू लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। masterkalijanjeepu.com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हो। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो पूरा वीक है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज कल बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं, तो जहाँ पे भी बस उनकी रुकती है बच्चों को उतारने के लिए, जहाँ उनको पिक करने के लिए, तो आप जरूर स्टॉप करिएगा उसके लिए। बच्चों की, आपकी सुरक्षा के लिए भी, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी। और अभी वीकेंड है, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, 18, 19 और 20 सितंबर के लिए 3 दिन का है। तो जहाँ पे जो स्टैनले रोड पे कन्वेंशन सेंटर है, तो स्कोशिया कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे ये म्यूजिक फेस्टिवल नियाग्रा फॉल में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कल रात को मैंने देखा, और आज शाम को भी बहुत सारे लोग नियाग्रा फॉल में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप भी जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी एंजॉय करवाइएगा। तो मैं आपको भूले बिसरे कोशिश करती हूँ कि जो गाने इतने ज़्यादा प्ले नहीं किए जाते हैं, भूले बिसरे से हो गए हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको ऐसे ही गीत सुनाऊं ताकि आपको थोड़ा मजा आए और मुझे भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए। ठीक है ना? तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड ए सेफ वन। और आप जरूर अपना किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, रन कीजिए। और कल 20 सितंबर को आपके लिए जो है टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल उसमें जाती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो राम मंदिर वाले गणेश विसर्जन बोट क्रूज भी है उनका, तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जो हर साल करती हूँ टेरी फॉक्स रन के लिए जाती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी 5 किलोमीटर। सो ऑल द बेस्ट। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला।

0: मन्नाडियन लता जी आशा पारे शंकर को बड़ी प्यारी मूवी है। आप जरा बहारों की
1: सफेद

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: Glasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses. तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज. जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए. आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7530 पर कॉल कीजिए 9054162733. अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस.
1: दिल कर रहे हैं ताही का सिद्ध करन लगे हैं. जरा सुन के सोने हो.

आपको मिलेंगी वहाँ पे, कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है ऊबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाने हैं, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। तुम सब ही तेरे

मूड़ कछ तेरे न जान, महादेव को कहते सदा शिव, निरंकार का चीन तुम्हें देव, आप अपने कुल रहते थे, परणत तेन तेन कोई देती, तुम्हारा न खाना गाए तो सारा, यह कभी सदा

सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकट मैंगो लीव्स केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 41 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।

कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानपि तदे धर्मेण रक्तं मह्यं च कृपया पुष्करे पुरा त्रिपुरारिश्चय कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा ममोच ब्रह्माय कृत्वा मधुकैटभयोर्भया।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन हो है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीकेंड है।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब पहले तो पितृ पक्ष शुरू होने होगा। अब गणेश उत्सव जो है उससे सारे महाउत्सव जो है हर साल, तो गणेश उत्सव हमने मना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो अब आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातचीत आपके साथ करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में इस फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर नया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसी आउटडोर फर्नीचर आपको चाहिए, तो वो सारा सामान ही आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, तो सारा सामान आपको, ये जो सारा सामान है ये आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने मूविंग करनी है तो मूविंग करने के लिए आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपके लिए बहुत ही, उनकी सर्विस बढ़िया है, कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए, 416-524-6524-6704। तो जो लंदन और आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी वाली खबर है कि लंदन में अब आपके लिए खुल चुके हैं, जी हाँ, आपके लिए खुल चुके हैं मास्टर कोलिजन डिपो। तो आपका किसी तरह का भी कोलिजन का काम आपने करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो पे आप जाइएगा, गोर रोड पे मौजूद है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, आपकी कार बैंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो जी है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको जैसे मैंने कहा कि कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $475 पर पाउंड तो शुरू ने, बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स ऑन 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135-016-213-1165।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है टोरंटो आसपास के इलाके में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हो। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू, तो थैंक्सगिविंग आने वाला है अभी, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आप के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है और टीवी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, किचन की गैजेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी गोल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपको मूव करना है तो एचके मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपको मदद करते हैं कनाडा भर में मूव करने में। तो एचके मूवर्स का नंबर आप लिख लीजिए, 416-524-8004, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अते हैमिल्टन वासियो, की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ आटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लै के $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर्स दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर्स दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਦੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-4840, तो आ रहा सुनो 365-384-3840। BBT रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स, BBT रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत और सुनाते हैं। तो अगर आप को किसी किस्म की भी आपने गाड़ी की आपने कोलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए आई लव आपके लिए हैमिल्टन में, आपके लिए लंदन में, मैं कह रही हूँ हैमिल्टन में, लंदन में आपके लिए अब मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुके हैं। तो वहां पे आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे। गोर रोड पे मौजूद है लंदन में। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको अपने कलीजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलीजन जीपू लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। masterkalijanjeepu.com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हो। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो पूरा वीक है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज कल बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं, तो जहाँ पे भी बस उनकी रुकती है बच्चों को उतारने के लिए, जहाँ उनको पिक करने के लिए, तो आप जरूर स्टॉप करिएगा उसके लिए। बच्चों की आपकी सुरक्षा के लिए भी, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी। और अभी वीकेंड है, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, 18, 19 और 20 सितंबर के लिए 3 दिन का है। तो जहाँ पे जो स्टैनले रोड पे कन्वेंशन सेंटर है, तो स्कोशिया कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे ये म्यूजिक फेस्टिवल नियाग्रा फॉल में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कल रात को मैंने देखा, और आज शाम को भी बहुत सारे लोग नियाग्रा फॉल में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप भी जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी एंजॉय करवाइएगा। तो मैं आपको भूले बिसरे कोशिश करती हूँ कि जो गाने इतने ज्यादा प्ले नहीं किए जाते हैं, भूले बिसरे से हो गए हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको ऐसे ही गीत सुनाऊं ताकि आपको थोड़ा मजा आए और मुझे भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए। ठीक है ना? तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड ए सेफ वन। और आप जरूर अपना किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, रन कीजिए। और कल 20 सितंबर को आपके लिए जो है टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल उसमें जाती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो राम मंदिर वाले गणेश विसर्जन बोट क्रूज भी है उनका, तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जो हर साल करती हूँ टेरी फॉक्स रन के लिए जाती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी 5 किलोमीटर। सो ऑल द बेस्ट। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स एट द बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टेक्ट करो 647-400-6862

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se Anu call karo. Phir to Anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiyan nikkiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: Imagine करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6947400188 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हां कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: news desk. Locally covered, nationally connected.
1: Afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिये। हरप्रीत सैन जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड। अपने ने कोई भी गलबात करनी है, नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दी थी पिछले दिन कि चार मुंडिया नु डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया सी। टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नु डिपोर्ट किया है। वैसे जो देखा जाए मई 9-2022 की गल है, बीसी दे विच कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई करवाउंदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्हां ने ही उन्हां नू कुट कुट के मारता। थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी ओह लै के भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्हां विच गुरकरण सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने। ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नू पहलां ही डिपोर्ट कर दिता गया।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई हाँ तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी केड़ी चीज ओदे विच होनी चाहिदी आ बच्चियां दी केड़ी केड़ी चीज जेड़ी ओ फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप दे दौरान ए सारियां चीजां नूं ऑर्गेनाइज कर दे तू बन जा
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए है बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किदा दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: चंगा
0: लगा नी नाले मुक दी गल जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नूं भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देण फेर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दीआं गल्लां
2: मेरे नब जी मेरा बिजनेस नहीं जे चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: यार मैनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ दी?
1: ओया पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी ही ने रिंगटोन ते नची जाना।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।